द हिट ऑफ द आवर विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो बॉल चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: प्रोटेक्टेड। नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
0: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
2: When it comes to Basmati, we cannot compromise on quality. Winners of 41 Great Taste Awards. Tropical Sun's Basmati will always shine above the rest. Available in independent stores nationwide. Tropical Sun. Feed your family the best.
3: Herald, a new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald Winter Catalogue today. Call 0208-507-7900 or download their Winter Catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and delivery businesses. Herald Packaging, available at food services, cash and carries and with disposable suppliers to trade, visit heraldpackaging.com.
4: Dosto, aap sabhi ka swagat hai fir se ek baar Khelo aur Jeeto program ke dusre episode mein. Khel ko jeetne ke liye main aapse poochne wala hu pehla sawal, jo hai aapke computer screen par. Gold bechne ki sabse sahi jagah kaun si hai?
5: Main phone a friend istemal kar sakti hu?
4: Ji bilkul.
6: Shabnam, iska jawab Gold Bank hai.
5: Haan, mujhe Rahul ka jawab theek lagta hai. Gold Bank.
4: Bilkul sahi jawab. Ab aakhri sawal. गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
5: सर, मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
4: बिल्कुल, आप ऑडियंस पूछ ले सकती है।
7: गोल्ड बैंक।
5: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
4: यहाँ देखिए, 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
2: विजिट द गोल्ड बैंक, 215 द ब्रॉडवे साउथ, 0203-500-1111, goldbank.co.uk।
8: ZTV HD पर सारे गामा पामे कसौटी पर उतरकर कंटेस्टेंट्स करेंगे म्यूजिकल धमाल।
9: व्हाट अ टैलेंट यार, कम ऑन।
8: Air India Saregama Pa presented by South Hall Travel. Aaj sham 7:30 baje. ZTV HD par. Available on Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 and Z5 app.
10: The people of Britain love their spin bikes. They bought loads of them. Another thing they love is moving their credit card balances to a Barclaycard Platinum credit card because they could pay no interest for up to 36 months. No wonder it's really taking off. A balance transfer fee of 3.15% applies, subject to financial status. T's and C's and exclusions apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 24.9% APR representative variable and 24.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
11: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

0: today's listener's choice. Well, for this hour's listener's choice, this was option A. And B. And the winner is...
1: Listener's Choice, brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% tonight at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.

0: system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babata day.
1: पांच मरद एक जो अरे कोई देखेगा तो थूकेगा तुम लोगों पर. ऐसा करो ये चूड़ियां पहन लो, मामला लेवल हो जाए.
2: हर इंडियन पिक्चर में ऐसा ही होता है.

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

मसरूस रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्मा नहीं घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, नीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: And the winner is...
1: It was going to be looked at, it was going for, forward towards a draw, but it didn't happen in the end. Suddenly, one just shot ahead.
2: Listener's Choice, brought to you by Star Plus.
3: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
4: Watch India's top 1% tonight at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
5: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं.

0: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
1: बिल्कुल, आप ऑडियंस को ले सकती है।
2: गोल्ड बैंक।
0: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
1: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
3: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ओ 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
4: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% tonight at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The Gold Rate with Sunrise Radio on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, worldwide via Sunrise.

0: द हिट ऑफ द आवर विद जेन्युइन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेन्युइन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेन्युइन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो बॉल चिक्की और बहुत कुछ। जेन्युइन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: Play next on Sunrise. Life make you look complicated.
2: Kisi ko na doon explanation. Coming up, it is Swags' solo with Sachit Tandon and Tanish Bagchi, along with this song. There you are, the Jayshree coming your way. Keep it locked.
3: Dream kitchens, spa bathrooms, fitted wardrobes, mood lighting, floors you love underfoot. Every piece is chosen for you, designed to feel like you. That's where we come in.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADशा नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: हिट ऑफ द आवर विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो बॉल चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: नेक्स्ट ऑन सनराइज।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।